नए हफ्ते लंघ गए ने, दोवे संगीतकार हजे भी डेरा लाई बैठे ने, उड़ा दे सामने इधर उधर बिखरे हुए ने, डूंगे हनेरिया दे नाल लाबा लाब परे हुए खड्डिया ने उन्होंने चार चुफेरियों घेरिया होया। ओ चिणक जिसने बुखार जही अग फड़ी सी एक समय, वो भी बल के एकदम थक चुकी है, ताप ठंडा पै चुका है, मोहल्ले वाले तक खरिया खोटियां सुना के लांता पा के कदों ते आपो अपने घर मुड़ गए ने। ते दरिया उंज दा उंज बिना पासा लई मुर्दा जिहा पिया है निर्जीव, हुण किसे अर्थ दी तांग नहीं, दोवें थक के हताश हो चुके ने, ना हाथ डोए पट्टन लई उठदे ने, ना जवाबां दी तांग बची है, इस अंदरले बारले खालीपन विच्चों सिर्फ एक आवाज जन्म लेती है।